0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Durban Radio.
1: So, Shailja ji, Sanjay ji, हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं और आपका कहना यह है कि इनकी जो किताबें हैं उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, ऐसा लगता है कि कभी ये लगता है कि ये वकील हैं, कभी ये लगता है कि ये
2: IAS ऑफिसर हैं,
1: IAS ऑफिसर हैं,
2: फॉरेस्ट रेंजर हैं,
1: हाँ, या मतलब सिर्फ राइटर ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंजीनियर भी हैं. इंजीनियर तो इनके पास क्वालिफिकेशन है, इनके पास सर्टिफिकेट है. इसके अलावा इन्होंने अच्छा काम भी किया है, मैकेनिकल इंजीनियर थे तो इन्होंने बड़ी अच्छा.
2: M5 में आपका नाम दर्ज है और मुझे तो ये लगता है कि हम जैसे साधारण प्रशंसकों से अलग प्रशासनिक प्रशिक्षण व सेवारत अधिकारियों को जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग होती है उन लोगों को आपकी किताब पढ़नी चाहिए.
1: और देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये अपना जो हल्का हल्का सफ़ेदी आ गई है इनकी मूछों पर, अगर इसे भी काला कर लें तो लगता है 25 साल का लड़का कहाँ से आ गया.
3: जी बहुत शुक्रिया. अच्छा, दरअसल इस सारा जो है, जो कुछ भी आप देखते हो मैं लिखता हूँ, इसमें मेन ये है कि अधिकतर समय मैं अध्ययन ही करता हूँ, चाहे वो गूगल से हो या किताबें खरीद के हो. अब तो उतना नहीं खरीदता मैं, लेकिन अभी तक ये था कि मैं हर साल जब इंडिया आता था तो करीब 20 किलो का पैकेट एक मेरा वहाँ से पोस्ट करता था, मैं यहाँ आता था. तो अभी तो जो मैंने अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो गया है, यहीं पे मिल जाती हैं किताबें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लिख दे तो वो यहीं भेज देता है बहुत, और टाइम से दूसरे तीसरे दिन आ जाती हैं.
1: अच्छा, तो आप लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं?
3: पढ़ते हैं लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया पढ़ना, उसकी पढ़ते हैं मैं केवल मैटर पढ़ता हूँ, जैसे कि अब टैक्स के ऊपर है तो, या अभी जैसे आपने देखा कि जैसे कि दीदी ने बताया कि इसके बारे में है, IAS IPS के बारे में, तो उनका वो सारा पढ़ना, लॉ के बारे में पढ़ना, और जो बीच में मैंने जैसे इस किताब में लिखा है कि जो वन विभाग में जो चोरियां हुई लकड़ी की, तो वो कौन कौन सी लकड़ी होती, क्या होती, वो सारा स्टडी करना, तो वो उसी में टाइम ज़्यादा लगाता हूँ मैं.
2: लेकिन किताब लिखने के लिए आपको रिसर्च काफ़ी करनी पड़ती
3: है, बहुत ज़्यादा, बहुत
2: कि इसमें आप जितने भी लिख रहे हैं वो फैक्चुअल चीज़ें हैं और आप अपने आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं. ये बताइए संजय जी, अब आपकी अगली किताब कौन सी है, 13वीं?
3: ये बड़ा मुश्किल है. ये तो बहुत ही मुश्किल है. मैंने मेरे साथ इतना मतलब सुपरस्टिशन है थोड़ा सा. मेरी एक किताब थी जो आप, दूसरी किताब आपने पढ़ी है, झूठे नाते करके. झूठे नाते के टाइम पे हुआ कि वो किताब जो है एक बहुत बड़े पब्लिशर, उस जमाने में नया मतलब था पब्लिशिंग में, तो बहुत बड़े पब्लिशर ने वो मुझसे ले ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाकायदे, और जगन्नाथ करके पब्लिशर था हिंदी में, और उन्होंने मुझसे ले ली थी, और वो तो हमने जाके चौड़े हो गए अपने, जाके हमने दूसरे पब्लिशर को जो है हमें गा दिया, हमने कहा कि देखो अब हमको हल्के मत लेना, अब मैं बहुत बड़ा वो हो गया हूँ. अब उसमें हुआ क्या कि वो, और मैंने सब जगह गा दिया कि साहब ये है, देखिए मैं तो इनके साथ पब्लिश हो रहा हूँ, तुम लोग कोई चीज़ नहीं हो. तो उस हिसाब से हुआ क्या कि फिर कुछ ऐसी नज़र लगी कि जो लेडी थी रेनू अगाल करके थी, बहुत फेमस थी उसकी, द प्रिंट में बाद में काम करती थी वो, तो उन्होंने एक तो नौकरी छोड़ दी पहले, वो प्रिंट में चली गई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई.
1: अच्छा.
3: और फिर वो हिंदी विभाग ही बंद हो गया उस पूरे पब्लिशर का.
1: अच्छा.
3: तो हमने कहा भाई इससे अच्छा है किसी कुछ बताना ही नहीं है. तो मैं कई किताबें एक साथ भी लिखता रहता हूँ, तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, जब आएगी किताब तो आपको पता चल जाएगा.
2: तो ये आप सीक्रेट रखेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी
3: ये थोड़ा सा है, मैं सुपरस्टिशियस हूँ थोड़ा सा.
1: एक्चुअली जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सुपरस्टिशन शायद बढ़ जाता है.
3: हाँ बिल्कुल.
1: क्योंकि मैंने एक्चुअली अपने जीवन में भी कुछ ऐसा देखा है कभी कभी कि सुपरस्टिशन हो जाता है क्योंकि आपके साथ अगर उसी तरह की घटना बार बार होती है तो आपकी समझ में आता है कि हाँ कुछ तो है। तो संजय जी अभी तो आपसे काफी बात हो चुकी है, हम एक गीत सुनाएंगे अच्छा सा और उसके बाद दुर्गा शक्ति पर भी आ जाएंगे और आपकी किताब के बारे में और दुर्गा शक्ति के बारे में बात करेंगे और शैलजा जी की नवी बहुत सारी किताबें लिखी।
3: हाँ जी बहुत।
1: शैलजा जी की किताबों के बारे में भी बात करेंगे, दुर्गा शक्ति की भी बात करेंगे। तो क्योंकि समय सरकता जा रहा है तो एक गीत और हो जाए।
2: यस, तो ये बताइए प्रदीप जी, क्योंकि परसों है सोशल मीडिया का इंटरनेशनल डे।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: तो और आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हर व्यक्ति के जीवन का ये अभिन्न भाग है, तो थोड़ा सा इसमें हम चाहेंगे, और संजय जी ने इस पे भी कुछ लिख रखा है
3: जी,
2: तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत हम इस पे भी बात करें। और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है, ये लोगों के मानवीय मूल्यों की मजबूती के आधार पर जोड़ता है, पहचान के आधार पर नहीं। तो सोशल मीडिया की इतनी उपयोगिता है, सोशल मीडिया के अगेंस्ट इतना कुछ कहा जा रहा है, तो ये ज़रा बताइए कि आपका क्या विचार है सोशल मीडिया, फिर मैं अपने विचार बताती हूँ, फिर प्रदीप जी अपने।
1: इसके पहले एक वार्ता भेजी है हमें रंजना जी ने
2: जी,
1: उस वार्ता को सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसके बाद बात करेंगे।
2: हाँ।
1: और उसके थोड़ी देर के बाद एक गीत और सुना देंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सोशल मीडिया की जो उन्होंने रंजना जी ने भेजी है, आशा है कि वो कहाँ गई, सोशल मीडिया मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, तब तक आप लोग बात करते रहिए, कहाँ गया।
3: हाँ देखिए, मैंने जो मेरा एक व्यंग संग्रह है खुरपेंच करके नाम है,
2: व्यंग संग्रह।
3: हाँ खुरपेंच के नहीं, बहुत बड़े खुरपेंची हो तुम।
2: हाँ, खुरपेंच
3: जो खुरपेंच करता रहता है आदमी। हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने एक व्यंग है उसी में जो छपाया, और बड़ा ये व्यंग संग्रह बड़ा फेमस हुआ था, इसका जो है बेस्ट सेलर रैंक 6 आया था कि उस टाइम पे डायमंड बुक से पब्लिश है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ये इस पर लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक पे,
1: अच्छा
3: ये जो क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया पे
2: जी।
3: तो सोशल मीडिया को मैंने उसमें नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक नुक्कड़। आपको याद होगा कि इंडिया में नुक्कड़ होते हैं जहाँ पे पान की दुकान और एक चाय की टपरी होती है।
2: हाँ, हाँ,
3: और वहाँ लोग बैठे बकवास करते रहते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो अधिकतर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल वही हो गया है, वहाँ नुक्कड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे बैठे बैठे कर
2: बिल्कुल कॉफी हाउस।
3: हाँ तो उसको हमने एक और नाम दिया भी है, सिर्फ उटअल, खासतौर से व्हाट्सएप को।
1: चलिए मुझे मिल गई है रंजना जी की,
3: फिर आगे फिर बात करते हैं इसके बारे में जरूर।
4: श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है। सोशल मीडिया डे एक कोई नया नाम नहीं है, बट इसके बारे में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया ने हमें क्या कुछ दिया, हमसे क्या कुछ छीन लिया और हमें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। जहां दुनिया मिलती है, हंसती है, सीखती है और कभी कभी बहस भी कर लेती है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया इंसान होता तो 30 जून को शायद कहता, थैंक यू दुनिया, मैं तो बस टाइम पास के लिए आया था, तुम लोगों ने मुझे करियर, राजनीति, रिश्ते और मीम्स का केंद्र बना दिया। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, ये तो एक वैश्विक खेल का मैदान है, जहां भारत का बच्चा रील बनाता है, ऑस्ट्रेलिया का युवक सर्फिंग की फोटो डालता है और दोनों को लाइक करने वाला कोई तीसरा इंसान कैनेडा में बैठा होता है। तो आइए इस खास दिन पर सोशल मीडिया की दुनिया के एक मजेदार सफर पर चलते हैं रंजना रमन के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजर से। भारत में सोशल मीडिया क्या है और इसका क्या अर्थ है? भारत में जहां हर कोई स्टार है, भारत में सोशल मीडिया का मतलब है ऊर्जा, उत्साह, रचनात्मकता और थोड़ी सी ड्रामा क्वीन वाली फीलिंग। यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक राष्ट्रीय भावना है। भारत में सोशल मीडिया की खासियत ये है कि यहाँ रील्स ऐसे बनती हैं जैसे चाय हो, हर घर में हर समय। मीम्स इतनी तेजी से वायरल होते हैं कि सरकार की नोटिफिकेशन भी पीछे रह जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर कोई प्रोफेसर है, चाहे वो हेल्थ टिप्स हो या अर्थव्यवस्था। ट्विटर पर लोग ऐसे बहस करते हैं जैसे देश की किस्मत उसी थ्रेड में तय होनी है। लेकिन मजाक अपनी जगह, सोशल मीडिया ने भारत में असली बदलाव भी लाए हैं। भारत में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। छोटे शहरों के क्रिएटर्स को एक नया और बड़ा मंच मिल गया है। लोकल दुकानों को एक नया डिजिटल बाजार मिल गया है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब तेजी से फैलने लगी है। स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को एक नया जीवन मिल गया है। तो मिला जुला कर भारत में सोशल मीडिया एक डिजिटल चौपाल है जहां लोग मिलते हैं, भिड़ते हैं और सीखते भी हैं। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की नज़र से कैसा है सोशल मीडिया। यहां अगर कुछ शब्दों में मैं कहूं तो वो कूल, कैजुअल और कॉफी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का अंदाज थोड़ा अलग है। यहां लोग कहते हैं नो वरीज मेट, पहले एक फोटो डालते हैं फिर काम शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया की कुछ अपनी खासियतें हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर बीच लाइफ, कैंगरू सेल्फी और कॉफी आर्ट सबसे ज्यादा चलती है। फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स इतने क्रिएटिव हैं कि खोई हुई बिल्ली भी 10 मिनट में मिल जाती है। लिंक्डइन यहाँ लगभग नेशनल नेटवर्किंग स्पोर्ट है। टिकटॉक पर ऑस्ट्रेलियाई ह्यूमर सीधा, सरल और थोड़ा सा सेटायर बहुत पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का प्रभाव भी थोड़ा अलग है। प्रवासी समुदायों को जोड़ने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ताकत मिल रही है और सरकारी घोषणाएं सीधे जनता तक पहुंचती है। शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक अभियान चलाए जाते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज को सोशल मीडिया एक मंच देता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का टोन है स्मार्ट, क्वाइट और थोड़ा सा ह्यूमर। अब देखते हैं ग्लोबल कनेक्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया का कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया ने दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। भारत में बैठा कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ देख सकता है। सिडनी में रहने वाला कोई भारतीय परिवार अपने गांव की शादी लाइव देख सकता है। दोनों देशों के क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं। भारतीय त्योहारों की रौनक ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेंड बन जाती है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की हर जीत भारत में भी मीम्स का त्योहार बन जाती है। सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा, जुड़ा हुआ और कभी कभी थोड़ा सा नॉइजी बना दिया है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया हमें सिखाता क्या है? सोशल मीडिया हमें सिखाता है दोस्तों, खाना खाने के पहले फोटो खानी चाहिए। लोल का मतलब हंसना नहीं, ये बस एक औपचारिकता निभाना है। सीन का मतलब जवाब देना नहीं होता। और सबसे बड़ा सबक, अगर कुछ वायरल हो जाए तो समझ जाना कि इंटरनेट का मूड आज अच्छा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सोशल मीडिया एक दिन नहीं, एक दुनिया है। 30 जून का वर्ल्ड सोशल मीडिया डे हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कनेक्शन, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी की ताकत है। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। थोड़ी हंसी, थोड़ी सीख और ढेर सारा स्क्रीन टाइम। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करें, वरना आपकी पुरानी फोटो किसी दिन मीम बनकर सामने आ सकती है। धन्यवाद।
5: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
6: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आशा है कि आपको रंजना जी की मनोरंजक जो वार्ता थी बहुत अच्छी लगी होगी और उन्होंने सारे पहलू कवर तो कर लिए हैं। लेकिन हमारे सामने बैठे हुए हैं संजय जी और शैलजा जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है शैलजा जी?
2: सोशल मीडिया तो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप बगैर सोशल मीडिया के कहीं रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। لیکن اس کے جو اگینسٹ چیزیں ہیں ان کو بھی ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو میں تو سنجے جی سے پوچھوں گی سنجے جی آپ نے کیا پرکاشت کیا ہے اس وشے میں
3: دیکھیے اس میں مین جو بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس میں تمام اچھی باتیں ہیں آپ کے پاس ایویڈنس مل جاتا ہے ایز اے وکیلوں کے لیے کہ صاحب کسی نے کہیں کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کی ویڈیو بنا لیا اور فٹافٹ جو ہے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سب جگہ ڈال دیا اور گورنمنٹ کو بھی جلدی نوٹس میں آ گیا تو وہ سب تو اچھی باتیں تو ہیں
2: بالکل
3: لیکن ایک اس میں ایک اس خرابی ہے کہ اتنا زیادہ انوالوڈ رہتے ہیں لوگ کہ انہیں جو واستوک سکاراتمک جو جو ان کو خود کرنا چاہیے
2: جی
3: اس کے لیے ٹائم نہیں بچتا ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ جیسے اسی لیے اس کو اسی لیے میں نے نام رکھا کہ صرف فٹول زیادہ ہوتی ہے لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں اور سکاراتمک یوز کم کرتے ہیں
7: نہیں بحث کر رہے ہیں سنجے جی ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی فومو ایف او ایم او فے کیا کہتے ہیں اس کو کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ
3: ہاں
7: مطلب یہ ہے کہ جو فیس بک ہے وہ ایکچولی فیک بک ہے اس سینس میں کہ آپ دوسرے کی فوٹو دیکھتے ہیں ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے جیون میں ایسا کیوں نہیں ہے
3: ہاں جی
7: تو اس سے کافی لوگوں کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اسی لیے
2: تمناتمک چیز بہت ضروری ہے
7: ہاں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا کس نے لائک کیا کس نے لائک نہیں کیا
3: تو وہی تو کہہ رہے ہیں زیادہ لوگ اس پہ انوالو ہو گئے ہیں لمٹ سے زیادہ ہو گئے اب جیسے کہ اس کا میں بتا رہا ہوں واٹس ایپ کا جو میں نے جو ویانگ لکھا ہے اس میں یہ اس گھٹنا کا الیکھ ہے کہ واٹس ایپ کے ایک نکڑ پہ دو وکیلوں میں جو ہے بحث ہوئی وواد اتنا بڑھا کہ ایک وکیل نے دوسرے کو گولیاں چلا دی وہ بھی نیائلے پرسر میں
7: اچھا
3: ہوا یوں کہ اس وقت نکڑ پر یعنی واٹس ایپ پر رات میں ہوئی اس بحث کی اگلی صبح ان میں سے ایک وکیل تڑکے ہی تھانے جا پہنچا وہاں اس نے ایک وچتر سی نامزد شکایت درج کرائی جس میں اس نے دوسرے وکیل پر آروپ لگایا کہ اکت سہکرمی وکیل نے رات کو واٹس ایپ پر انہیں بہت بھلا برا کہا یہی نہیں بلکہ انہیں تتھا ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی بتائیے واٹس ایپ پہ پولیس میں شکایت درج کرانے کے بعد وہ اس شکایت کی سوچنا دینے نیائلے بار ادھیکش کے دفتر جا پہنچے
7: اچھا
3: ابھی وہ بار ادھیکش سے بات کر ہی رہے تھے کہ وہ دوسرا جو سہکرمی وکیل ہے وہ بھی آ گیا اس نے آو دیکھا نہ تاو ان کے اوپر تابڑ توڑ تین گولیاں داغ دی وہیں ادھیکش کے سامنے بتائیے ہاں تو اتنا زیادہ برا اثر بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی اتنا زیادہ بحث میں آ جاتا ہے
7: یہ صحیح گھٹنا تو نہیں ہے نا
3: یہ بالکل سچ گھٹنا ہے ہم آپ کو اخبار کی کٹنگ بھیج سکتے ہیں
7: اچھا
3: ہاں
2: بتائیے
7: کمال
3: ہم نے اسی لیے اس لیکھ پہ میں اس کو ایڈ کیا تھا اس چیز کو کیونکہ عام طور پہ دیکھیے کیا ہے کہ بھارتی جو ہیں وہ بحث پریمی ہوتے ہیں ہے نا بحث اور مباحثے میں فرق تو سمجھ رہے ہیں نا مباحثہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے کوئی بات کہی مجھے اس کے زیادہ اس کے اگینسٹ یا کس کوئی بات معلوم ہے جو کہ میں نے کہا کہ دیکھیے تردیپ جی آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے پہلو ہے تو وہ تو ہوا مباحثہ دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں پردیپ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ ہوئی بحث تو دوسرے کو خالی غلط بتاتے رہنا اس کے یہ بہت آسان کام ہے اور یہ اس کے لیے بھارتی بہت فیمس ہے
2: جوش آ جاتا ہے ایک بار آپ میں لیکن سوچیے کہ یہ سمسیا اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ سائیکیٹری میں ایک ڈائگنوسس انٹروڈیوس ہوئی ہے نئی ڈائگنوسس انٹرنیٹ اڈکشن
7: اچھا
2: انٹرنیٹ اڈکشن از نو لیس دین ڈرگ اڈکشن اینڈ الکوہل اڈکشن
7: بالکل
2: تو شروتاؤں آپ لوگوں کو چاہے کتنا ہی اس میں اپیوگتا ہو لیکن آپ کو اپنا نینترن اس کے اوپر کرنا آوشیک ہوگا کہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے واٹس ایپ گروپ میں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے اور آپ نے جیسے کہا پردیپ جی کہ ہینتا کی بھاونا آ جاتی ہے کہ بتائیے دیکھیے ان کے یہاں اتنی پارٹیاں ہو رہی ہیں اتنے ان کے دوست آئے ہمارے یہاں کوئی دوست نہیں آئے ہماری پارٹی
7: لوگوں کا ڈپریشن ہو جاتا ہے
2: اور کیا بالکل ڈپریشن ہو جاتا ہے اس سے تو آپ کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے کہ آپ اس سے کیا پڑھائی لکھائی میں اب دیکھیے جب سے کووڈ ہوا ہے تب سے تو لگتا ہے کہ بغیر انٹرنیٹ کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کہیں بھی جائیے آپ کو ایپ چاہیے آپ کو پاسورڈ چاہیے اور آپ کو واٹس ایپ سے میسیجز چاہیے تو ایڈکشن جو ہے وہ غلط چیز ہوتی ہے
7: اور یہ پاس ورڈ کا چکر ایسا ہے کہ ہر دو تین ویک میں چینج کریے اور دماغ خراب ہو جاتا ہے اس میں اپنا ہی پاس ورڈ بھول جاتے ہیں پھر باروں سے پیچھے لگتے ہیں اس میں ہی ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے اچھا ایک بات میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے یہاں کی آسٹریلین سرکار نے 15 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے وہ फेसबुक या सोशल मीडिया बैन लगाया हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है शैलजा जी आप बताइए पहले
2: एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मेरी बेटी जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया अथॉरिटी में सीनियर लॉयर है तो उसने अभी एक रिलीज लेजिस्लेशन किया है जिसमें कि स्पेसिफाइड है बिल्कुल चीजें कि किस उम्र तक आप कौन से सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और क्या इसका रिजल्ट क्या होगा अगर आप पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो स्कूल और पेरेंट्स में सब जगह ये अब लागू होगा कि 12 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं 14 साल से पहले 16 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन जो है अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है
7: लेकिन उसका पुलिसिंग कैसे करेंगे
2: पुलिसिंग यही करेंगे कि अब आजकल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज छुपी नहीं रहती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक नया डिपार्टमेंट उनका होगा जिसमें कि वो सारा का सारा पुलिसिंग करेंगे कि कहाँ किस बच्चे ने कौन सा साइट खोला है क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनको आप फ्रीडम दे दीजिए तो ऐसे साइट खोलते हैं जो भी आपके नजरिया में ऑब्जेक्शनेबल हैं
7: बिल्कुल बिल्कुल संजय जी
3: देखिए ये पुलिसिंग का जो आपने कहा ना तो ये आप जान लीजिए कि बड़ा आसान है हाँ ये एक बार अगर आप जो भी लिख इसमें डालते हो सोशल मीडिया पे या कंप्यूटर में या कहीं भी फोन पे वो सारा आप किसी तरकीब से मिटा नहीं सकते हैं वो रहता ही रहता है और जो जो जो जो जहाँ पे आपका इसका सर्वर है वो कभी भी पता लगा सकता है कि कहाँ पे और सर्वर तो आपके जानते हैं इस वक्त इसमें एक चीज और प्रॉब्लम है एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे सारे सर्वर जो हैं वो मेड इन चाइना है अब सर्वर मेड इन चाइना होने की वजह से समझ लीजिए उनके पास कहाँ कहाँ उसमें लिंक होगा वो कितना पता लगा सकते हैं आपको प्लस उन्होंने आपको भी गवर्नमेंट को भी लिंक दे रखा है कि साहब आप अगर कुछ जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के पास सारा हक है कि वो कुछ भी कर सकता है तो वो तो बच नहीं सकता कहीं से है ना तो ये तो है एक बिल्कुल कि है और प्लस दूसरी चीज जैसे दीदी ने कहा कि अभी कि पढ़ाई लिखाई और वो सब जो है उस सब के लिए टाइम भी चाहिए वो ना तो आप अगर टोटल सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो कहाँ से उसे कहाँ 24 घंटे से 25 घंटा तो मिलने वाला नहीं है
7: बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो ये और संजय जी एक इसी से रिलेटेड खास बात ये भी है कि पता नहीं यूट्यूब पर कितने मैंने वो देखे हैं कि आपका बैंक हैक हो जाएगा आपके पैसे गए हो जाएंगे भारत में तो बहुत हो रहा है यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ किसी तरह से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा करने से या अपलोड करने से या किसी लिंक पर क्लिक कर देने से ये तो एक इतना बड़ा हेडेक हो गया है
3: बिल्कुल एक जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी जिनको आगे आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे कि जब आप कहीं पे भी नया पासवर्ड की बाजू बात आपने की पासवर्ड डालते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड ऑन इंटरनेट ऑन गूगल को आप सेव करा दिए ऑलवेज से नो क्योंकि वो तो कभी भी अगर गूगल का पासवर्ड आपका बाई चांस मिल गया जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना गूगल अकाउंट खोला हुआ है अगर किसी तरह एक मिनट के लिए भी किसी ने वो एक्सेस कर लिया
7: एनक्रिप्टेड नहीं होता है जब वो सेव करते हैं तो एनक्रिप्टेड होता होगा
3: उसकी ट्रिक है कि वो इनक्रिप्शन भी देखिए कंप्यूटर इज अ वेरी वीक यूनिट बहुत ही कमजोर यूनिट है क्योंकि पता नहीं है इसलिए हम बचे हुए हैं बस
7: बिल्कुल
3: तो उसमें समस्या यही है कि अगर वो एक बार भी उसको अगर एक बार घुस गया किसी तरह से कहीं उसमें तमाम वो ऑप्शन है एक एक एक वो है मिस्टर अमित दुबे करके उनके पॉडकास्ट आप देखिए हाँ वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हम कितने कितने कमजोर हालत में हैं
7: बिल्कुल
3: बहुत ही तो वो जो है अगर एक सेकंड को भी उसको मिल गया आपका एक्सेस तो आपके सारे पासवर्ड फटाफट देख लेगा वो एक मिनट बल्कि प्रिंट करके रख लेगा
2: लेकिन बेसिक जो रूल है वो है अगर आपको अगर आप पहचानते नहीं है किसी भी लिंक को तो आप उस पर क्लिक
3: मत कीजिए सीधी सी बात
2: बस ये है
3: और खास तौर से कुछ तो बिल्कुल बेसिक रूल ऑफ थंब रख लीजिए कि आप जो भी आपके पास ईमेल आता है ईमेल से कोई चीज एक्सेस मत कीजिए ईमेल में आता है क्लिक हेयर वो कभी मत कीजिए आप अगर उस साइट के ऑलरेडी आपका पासवर्ड है तो उस साइट पे जाइए साइट पे अपना पासवर्ड डालिए वहां भी वो मैसेज आया होगा इनबॉक्स वहां भी है जो वो ईमेल आपको भेजते हैं उस वही ईमेल वो उस इनबॉक्स में भी भेजते हैं تو وہاں دیکھیے جا کے نا یہاں کہہ لیے اس میں چکر پڑے
7: بالکل بالکل تو سنجے جی ایسا ہے کہ ہمارا سمے بہت جلدی سے بیتا جا رہا ہے اور ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں درگا شکتی
2: درگا شکتی
7: ایسا ہے کہ 1970 کے دشک میں بہت سارے بھارتی لوگ یہاں پہ آئے تھے اپنے اپنے پریوار کے ساتھ اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ درگا شکتیوں کو بڈنگ درگا شکتیوں کو ساتھ میں لائے تھے اور ہماری مہیلائیں نے یہاں آ کر جو آپ نے کار ساز کی ڈیفینیشن بتائی کہ بہت اچھے اچھے کام کیے بہت اونچائی تک بھی پہنچی اور
3: شیلجا جی بھی کار ساز ہی ہیں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی ہیں
7: شیلجا جی بہت بڑی کار ساز ہیں
3: بالکل
7: اور شیلجا جی نے ان درگا شکتیوں کو کمپائل کیا ہے یہ نام دیا ہے انہوں نے درگا شکتی انڈین ویمن فرام ڈاؤن انڈر اس بک کی میں فوٹو شیئر کر دوں گا اس کے سامنے بڑی سندر سی ایک درگا بنی ہوئی ہیں
2: میں نے کانفیڈینشلی بتا دیا ہے پردیپ جی کو یہ کون ہے ان کے اتیت سے
7: اچھا اور اس میں 21 سڈنی کی نہیں یہاں کی آسٹریلیا کی 21 درگا شکتیوں کا نام درج ہے اور ان میں سے ایک درگا شکتی ہمارے سامنے شیلجا جی بیٹھی ہوئی ہیں
2: اب آپ اتیشیوکتی کر رہے ہیں یہ کہہ کے تو لیکن درگا شکتی مہیلا کیونکہ بھارتی مہیلاؤں کا پورا اگر آپ دیکھیں وشو میں ان کی جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ وہ کوئی باہر گھر کے باہر کام کر سکتی ہیں میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں کہ 1970 میں جب میں ہوم وزٹ کے لیے گئی کسی کے گھر میں تو پورے مجھے لگا کہ جیسے کہ میں ایک اسپیسیمن ہوں کیونکہ پورے پریوار جو تھا مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ انڈین ڈاکٹر فیمیل انڈین وومن ڈاکٹر انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا انہوں نے کبھی کہیں پڑھا نہیں تھا کہ بھارت کی عورت بھی ڈاکٹر ہو سکتی ہے تو اس وقت مجھے اپمان لگا یہ اپنا کہ ہمارے بھارت میں ویدک کال سے مہیلاؤں کا اتنا آدر ہوا ہے ہمارے ماں کا کتنا بڑا آدر ہوتا بھارت ماں ہوتی ہے پرتھوی ماں ہوتی ہے اور یہاں یہ دیکھ رہی ہے یہاں پریوار مجھے دیکھ رہا ہے کہ پہلی بھارتی مہیلا ہے اور سچ یہ ہے کہ 1865 میں سب سے پہلی جو ہمارے یہاں کی تھیں میڈیکل پریکٹیشنر سوچیں کہ آسٹریلیا سے پہلے وہ یہاں پہ آئی تھیں اور ان کا نام تھا دیکھیے کہ آنند بھائی جوشی 1865 میں وہ فرسٹ میڈیکل گریجویٹ فرام پینسلوینیا یونیورسٹی تھیں آسٹریلیا میں جو پہلی مہیلا تھی وہ 2 سال بعد ہوئی تھی اسی یونیورسٹی سے تو پہلی جو مہیلا تھی ڈاکٹر وہ انڈین ڈاکٹر تھیں اور مہیلائیں جو ہیں بھارت کی کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں اور یہی میں نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں ایک سے ایک بڑھ کر مہیلائیں ہیں اگر ہم سب کا اس میں اپنی کتاب میں اگر سب کا ہم وورن دیتے تو یہ پاسبل نہیں تھا اور جیسا کہ ابھی ہمیں سنجے جی نے کہا کہ یہ تو 21st century ہے اس لیے ہم نے
3: 21ویں صدی کی 21 مہیلائیں لے لی
2: 21 مہیلائیں ہیں اور ہمارے یہاں 21, 11 اور جو ایک نمبر ہوتا ہے اس کو ہمارا بڑا ہی شبھ مانا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس پستک میں 21 مہیلاؤں کے وورن دیے ہیں جنہوں نے کہ آشاتیت سفلتا پائی اپنے اپنے چھیتروں میں اور سب سے بڑا میرا بھاگیہ تھا سوبھاگیہ تھا کہ میری جو کو آتھر ہیں شیبا نند کلیوکر تو وہ جو ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اداہرن ہے تو ان کی بھی سہایتا تھی کہ ان کا کانٹیکٹ بہت سارے ہیں اور شی ہر سیلف از اے ویری ویل نون پرسن وہ بھی رہ چکی ہیں انڈیا آسٹریلیا بزنس کی پریسیڈنٹ رہ چکی ہیں بہت سارے ان کی بھی ہیں تو اس میں ہم نے اپنے اپنے چھیتر میں جن مہیلاؤں نے اپنی اونچائی تک پہنچی ہیں جو پہلی مہیلائیں ہیں جنہوں نے اس چھیتر میں اتنی سفلتا پراپت کی ہے تو ہم نے ان کا وورن اس میں دیا ہے تو بار بار ہمیں وشو کو بتانا پڑتا ہے کہ بھارتی مہیلائیں پیچھے نہیں ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو حالانکہ بھارت کی رینکنگ جو ہے جینڈر ڈائیورسٹی 134 ہے لیکن فیمیل پائلٹس ان انڈیا آر 12.4%
7: اچھا
2: آسٹریلیا میں 5.8% اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں 12% फीमेल पायलट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5.8% हैं और सोचिए कि 1936 में सरला ठकराल वो जो सबसे पहले उन्होंने प्लेन की पायलट 1934 में a female was a plane pilot. One of the important thing is that superior management में क्योंकि अब आजकल हर जगह हम यहाँ पे भी सब जगह ये कहा गया है कि कमिटीज में जिस कमिटी में भी महिलाएं रहती हैं उसकी ज़्यादा सफलता होती है.
7: बिल्कुल क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद महिलाएं अपने कार्य के लिए ज्यादा सिंसियर होती हैं.
3: अंदर जी मल्टी स्किल होती ना, हम लोग एक बार में एक काम करते हैं,
7: एक काम करते
3: हैं, महिलाएं जो हैं एक साथ दो काम कर सकती हैं, है ना, तो उसमें वो उनको एडवांटेज हो जाता है. दे कैन डिवाइड देयर ब्रेन इन टू पार्ट्स और फोर पार्ट्स और समथिंग.
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचिए कि मेल माइंड जो होता है वन ट्रैक होता है, फीमेल माइंड जैसा आपने कहा ना मल्टी स्किल्ड है. और ये है कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल आईक्यू होता है और ईक्यू भी होता है, तो महिलाएं जो होती हैं वो पूरा का पूरा संदर्भ लेती हैं. आप सिर्फ देखते हैं कि ये 8:30 बजे काम करने आ सकती है कि नहीं, महिला जो है वो देखेगी कि बच्चों को बच्चों का इंतजाम हो गया है कि नहीं हो गया है. और आई थिंक वो जो है इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने मेरे विषय में ये सोचा हो कि इस बच्चों को इसने खाना दिया है कि नहीं, तो मेरा आपका जो संबंध है उससे कहीं ज़्यादा गूढ़ हो गया. मैं सोचूंगी कि आपने कम से कम ये तो सोचा कि मेरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो इसलिए भारतीय महिलाएँ जो हैं वो काफ़ी आगे हैं. तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में महिलाएं जो है 39% अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 31. इंडिया में लोग सोचते हैं औरतें घर ही में रहती हैं, लेकिन 39% इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन एंड वर्ल्ड एवरेज इज 31%. इंडिया में 98% बिजनेसेस में कम से कम एक महिला रहती है, और जबकि विश्व में इसकी परसेंटेज 90% है. हमारे यहाँ 98% है, हर बिजनेस में एक महिला रहती है. तो इस तरह से और मिड मार्केट बिजनेस में भी इंडिया कहीं आगे, 47% मिड मार्केट बिजनेस में महिलाएं होती हैं और 26% ग्लोबल एवरेज है. तो इस तरह से देखिए कि भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं. फिर विश्व में आके हमारा सबसे बड़ा भारतीय हम लोग हैं, हर जगह हम जाते हैं, समय हो रहा है तो मैं संक्षेप में बस बताना चाहूँगी कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं हम कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि हमारे भारत की इमेज ख़राब हो.
7: बिल्कुल.
2: और भारतीय महिलाओं ने भी वही किया है कि हम जहाँ भी गए हैं, एक किताब फिजी में निकली थी, बहुत ही अच्छी किताब, फिजी माँ, तो उनका क्लेम था कि फिजी की जो संस्कृति है वो पुरुषों से नहीं, फिजी की माँ से.
7: बिल्कुल,
2: माँ से संस्कृति उसकी है. तो इसीलिए हमने सोचा कि ये पुस्तक जो है ये आवश्यक है हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए बड़ी इंस्पायरिंग होगी किताब.
7: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बहुत बढ़िया.
7: तो शैलजा जी, ऐसा है कि समय की कमी तो है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सब दुर्गा शक्तियों का, जो आपने 21 दुर्गा शक्तियाँ हैं उनका नाम पढ़ दूँ, और आप चाहें तो उनके बारे में एक एक सेंटेंस बताते हैं रैपिड फायर राउंड नंबर एक, अनीता बरार
2: जी जो हैं वो SBS की ब्रॉडकास्टर हैं. वो बहुत डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कई सारी बनाई हैं, लेखिका हैं वो और पत्रकार हैं.
7: आस्था तोमर
2: ये जो हैं ये सबसे पहली फीमेल साइकाइट्रिस्ट जो कि कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट की प्रेसिडेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है. एंड ये जो हैं सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट हैं.
7: बारबरा वार्ड
2: जो है फिजियन है और ये पॉलिटिशियन है.
7: करिश्मा कलियंडा
2: ये भी पॉलिटिशियन है,
7: यहाँ आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो.
2: जी हाँ जी हाँ, और ये बेंगलोर की हैं और ये वेस्टर्न सिडनी में MP हैं.
7: डॉक्टर
2: चंद्रकांता गरियाली जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी थी वहाँ तमिलनाडु में. अच्छा. IAS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर. अच्छा. लेकिन ये रहती हैं न्यूकासल में.
7: अच्छा. डॉक्टर मर्लिन कांगा AO
2: ملین اندراد یہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور ابھی جو ہے ورلڈ انجینئرنگ ایسوسی ایشن کی پریسیڈنٹ رہ چکی ہوں ان کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ نوٹڈ ہے کہ یہاں پہ کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اتنی پڑھی لکھی اور اتنی امپورٹنٹ اسری کو تو انجینئر ہیں آئی آئی ٹی بامبے کی
7: اچھا اچھا ڈاکٹر رجنی آنند لوتھرا
2: رجنی آنند لوتھرا جو ہے یہ بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سائیکالوجی میں لیکن یہ جو ہیں انڈین لنک میں کی ایڈیٹر ہیں
7: ڈاکٹر پیڈی پراکالا
2: یہ ہیں لائر ہیں یہاں پہ ان کی بھی اپنی کمپنی ہے
7: جیشری کلکرنی
2: جیشری کلکرنی یہ جو ہیں یہ سائیکائٹرسٹ ہیں اور یہ پہلی پروفیسر آف سائیکائٹری تھی میلبرن میں فیمیل سائیکائٹرسٹ انڈین
7: کمد میرانی
2: عمر
3: کمد
2: میرانی یہ بھی مشہور جانی مانی ہستی ہیں یہاں کی ایس بی ایس میں کہ یہ رہ چکی ہیں بہت سالوں انہوں نے قریب 35 سے 40 سال کام کیا کمد جی نے
3: ہندی کے لیے بہت کام کیا
7: لیسا سنگھ
2: نہیں
7: لیسا سنگھ
2: لیسا سنگھ جو ہے اینگلو انڈین سمجھیے یہ تسمانیا کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی پالیٹیشنز رہ چکی ہیں
7: مالا مہتا
2: مالا مہتا انہوں نے پہلا اسکول ہندی کا آرمبھ کیا تھا یہ بھی سڈنی کی ہیں
7: مینو شرما
2: جو ہیں یہ ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک یہ جرنلسٹ ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے
7: میتو بھومک
2: جو ہیں یہ فلم انڈسٹری سے
7: یس یہ ہمیں پاس دیا کرتی تھیں
2: جی ہاں
7: مولنی استھانا
2: یہ لائر ہیں اور انہوں نے بھی یہاں کافی کچھ پہلی پہل کی ہے
7: پریتی بجاج
2: یہ جو ہے ان کی اپنی کمپنی ہے اور انہوں نے بھی کافی کچھ کیا ہے جو کہ پہل ہے بھارتی مہلاؤں میں
7: پروفیسر وینا سہجوالا
2: وہ بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں وہ بھی بہت ہی جانی مانی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی ہستی ہیں کانپور کی گریجویٹ ہیں یہ
7: اچھا
2: آئی آئی ٹی
7: ریت فلوانی
2: کتنا
7: ریت فلوانی
2: یہ پھلوانی یہ جو ہے یہ بھی انٹرپرینور ہیں اور ان کا بھی بہت کچھ کولیبریشن ہے
7: سبا آبدی
2: یا سبا زیدی یہ جو ہیں یہ بھی بہت جانی مانی ہستی ہیں کیونکہ یہ آل انڈیا ریڈیو میں وہاں پہ انڈیا میں کام کر چکی تھیں یہاں پہ انہوں نے ان کا ٹیلی ویژن اپنا تھا اسٹیشن تھا اب سبا جی جو ہیں وہ کافی سارے ڈرامے وغیرہ کرتی ہیں اور یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرامہ کی گریجویٹ ہیں یہ بھی بہت بڑی جانی مانی ہستی ہیں
7: اور آپ نے 21واں نام دیا ہے سونیا گاندھی کا یہ سونیا گاندھی یہاں کہاں سے آ گئی
2: یہ سونیا گاندھی جو ہے اتنی کنفیوزنگ ہے جب میں پہلی بار ملی تو میں نے کہا آپ کی شکل تو بالکل نہیں ملتی تو یہ سونیا گاندھی جو ہیں ان کا نام پہلے تو اور تھا لیکن انہوں نے چونکہ شادی کی وہی ہسٹری ہے کہ یہ حیدرآباد کی ہیں اور یہ جو ہیں یہ میڈیا میں کافی ایکٹیو ہیں سونیا گاندھی لیکن یہ وہ اپنی وہ والی سونیا گاندھی اٹالین نہیں ہے یہ بھارتیہ ہیں حیدرآباد کی ہیں اور ان کے پتی کا نام ہے گاندھی
7: اچھا ایسا ہے کہ گلوبل ایسوسی ایشن آف فزیشینس آف انڈین اوریجن ڈاکٹر شیلجا چترویدی سرونگ ان ایگزیکٹو کمیٹی ممبر سپورٹنگ گلوبل میڈیکل کولابریشن شیلجا جی آپ نمبر ون دریا شکتی ہیں
3: جی
7: ہمارے کاریہ میں آپ آتی ہیں ہمیں بہت گرو ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ
2: یہ تمہارا آپ کی ذرہ نوازی ہے میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں تو سوچتی ہوں کہ سب کچھ بھگوان کی طرف سے ہوتا ہے
3: نہیں ہاں آپ کے بارے میں ایک شعر کہنا چاہیں گے
2: بالکل فرمائیے
3: کہ یہ میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں
2: اچھا
3: کہ بس یوں ہی نہ گزر جائیں گے ہم ان پیچیدہ رستوں سے
2: واہ کیا
3: بس یوں ہی نہ گزر جائیں گے ہم ان پیچیدہ رستوں سے ہمارے قدموں کے نشاں کل اور بھی گہرے ہوں گے
2: ارے واہ اگر رہ جائیں تو بہت بڑی بات ہے یہ تو میری قسمت
3: کسی راکھ کے ڈھیر سے آنے لگے جو آنچ تمہیں بہت ممکن ہے کہ ہم اس راہ سے گزرے ہوں گے
2: آپ نے تو سونے میں سہاگا
7: اچھا ایسا ہے کہ ہمارا سمے اب سماپت ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ہم ایک
2: گیت
7: فلم آئی تھی آنند 1970s کی فلم تھی
2: بالکل
7: راجیش کھنہ امیتابھ بچن
2: یہ تو بہت ہی بڑی
7: بات جب یہ ریلیز ہوئی تھی تب اس کو زیادہ لوگوں نے نہیں پوچھا لیکن جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو یہ اٹ بیکیم ون آف دا ویری ہٹ فلم اچھا اسی کا ایک گیت ہے راجیش کھنہ پر فلمایا گیا ہے سنیے

0: Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शैलजा जी, हमारे रिएक्शंस आए हुए हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को बता दें कि शैलजा जी ने दुर्गा शक्ति पर एक वीडियो लगाया हुआ है, बहुत सुंदर वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें। इसके बाद राजेश जी लिखते हैं, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। लीला तिवानी जी, ज्ञानवर्धक समाचारों के बाद प्रेरक विचार और मधुर भजन से आज का दर्पण रेडियो का शुभारम्भ मंगलमय रहा। नितिन कुंदप कहते हैं कि धन्यवाद दर्पण टीम, महत्वपूर्ण चर्चा इनकम टैक्स पर। अच्छा, मोहिनी जी ने कुछ लिखा था, डिलीट क्यों कर दिया मोहिनी जी? नितिन कुंदप कहते हैं, आशा है सीजीटी के बारे में भी बात होगी, इट्स द मोस्ट अपसेटिंग रूलिंग फ्रॉम द ईयर्स बजट। तो ये हम किसी और प्रोग्राम में कवर करेंगे अगले साल के लिए। ऋचा जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो हमने पूछ लिया है। राजीव निगम जी बोलते हैं, नमस्कार जी, इट इज़ रियली नाइस टू हियर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन वी कैन डू इन कनेक्शन विद द डिपॉजिट इन आवर सुपर डायरेक्टली टुडे विद थ्रेशोल्ड ऑफ 30,000। थैंक्स, वेरी गुड डिस्कशन ऋचा जी, धन्यवाद। अच्छा, इसके लीला तिवानी जी फिर बोलते हैं, संजय जी के लेखन की कहानी कुछ कुछ हमसे मिलती है। लीला तिवानी जी, आपको यहाँ आकर हमें बताना होगा उस कहानी के बारे में, हालांकि आप यहाँ पर कई बार आ चुकी हैं, लेकिन एक बार आकर संजय जी से मिलते जुलती कहानी बिल्कुल से जरूर सुनेंगे।
2: और क्या, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनती हैं।
1: सुनती हैं और कमेंट करती हैं।
2: बिल्कुल,
1: टैक्स पर यतीन जी की वार्ता बहुत ज्ञानवर्धक रही, इसमें से बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं थी, लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं। दुबे जी बोलते हैं, राम दुबे, गुड टू हियर द टैक्स प्लानिंग बाय वाई जी एंड संजय क्रिएटिव स्ट्रीक। आशिमा जी बोलती हैं, वेरी गुड प्रोग्राम। लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, वाह सोशल मीडिया डिजिटल चौपाल लीला तिवानी। राजीव निगम जी बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इफ एम्प्लॉय रेज इनवॉइस टू द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट इन विच ही इंक्लूड्स द GST इन द एवर इनवॉइस। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यतीन जी से आप डायरेक्टली बात कर लीजिए यहाँ पर।
3: सही बात है,
1: इस ग्रुप में उनका नंबर है, आप उनसे बात करिए, उनको बड़ी खुशी होगी कि आपने दर्पण के माध्यम से उनसे बात की। मृणाल जी बोलते हैं, संजय जी को उनकी ही जुबानी सुनना एक विशेष अनुभव है, उनका लेखन सार्थक और कड़े प्रश्न भी उठाता है। रंजना जी की डिजिटल चौपाल एक साधे हुए निबंध सा लगा। प्रदीप जी और शैलजा जी की प्रस्तुति तो विशेष होती है, दर्पण रेडियो को आज के अंक के लिए आभार। अरे मृणाल जी, आप कहाँ छुपे हुए हैं, हम तो आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे।
2: ढूंढ रहे हैं कि आप आ जाएं इस रेडियो प्रोग्राम में।
1: रेडियो प्रोग्राम में आइए,
3: बड़े बढ़िया कवि हैं।
1: हाँ, उनकी हिंदी बहुत
3: कविता
1: परिष्कृत हिंदी,
3: हाँ परिष्कृत हिंदी के अलावा बहुत सारगर्भित लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं,
1: बहुत बढ़िया,
3: और छंद का ज्ञान बहुत अच्छा।
1: और आपसे भी यंग हैं।
3: मैं मिल चुका हूँ, मेरी किताबें ये भी पढ़ते हैं।
1: अच्छा,
3: मेरी किताबें ये भी पढ़ते हैं।
1: राजीव निगम जी बोलते हैं, समटाइम्स पीपल बिकम एडिक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, लीला तिवानी जी फिर ने बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, सोशल मीडिया पर रंजना जी की वार्ता बहुत शोध के साथ लिखी, अत्यंत ज्ञानवर्धक लगी लीला तिवानी। अच्छा, इन्होंने दिखावे की दुनिया, दिखावे के लोग, सोशल मीडिया बना स्वयं
2: भयंकर रोग,
1: सबसे भयंकर
3: रोग, क्या बात है।
1: अच्छा, दो लाइन और पढ़ूंगा, आभास ही इस दुनिया में केवल है आभास, लाइक कमेंट बढ़ते रहे एक यही है आस।
2: जरूर जरूर,
3: बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहा
1: था बहुत सही,
3: बिल्कुल सही,
1: पूरा तो समय नहीं है, इसे फिर से आप पढ़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे जाकर। राजीव निगम जी आज बड़े एक्टिव हुए हैं, रियली सरप्राइजिंग टू नो द क्रिमिनल इंसिडेंट बाय प्रोटेक्शन लॉयर। रमेश जोशी जी बोलते हैं, नमस्कार टू ऑल, जस्ट वांट टू योर व्यूज दैट बिफोर वी केम अक्रॉस दिस सोशल मीडिया फीवर व्हाट हैड हैपेंड।
2: लीला जी, लीला जी, आपकी कविता तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा सटीक है।
1: उपाध्याय जी बोलते हैं, सोशल मीडिया दिवस पर रंजन जी की प्रस्तुति काफी सार्थक थी, इस और उसके बाद संजय जी द्वारा सोशल मीडिया से संबंधित कुछ आपराधिक घटनाओं का विवरण देना आज के दौर में सोशल मीडिया के महत्व को दर्शाता है। इसी संदर्भ में आजकल एक और अपराध कथा चर्चा में है, पुणे में एक

0: लड़की ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या अपराधों की सोशल मीडिया का योगदान है? अच्छा, ये बहुत बड़ी चर्चा है, किसी दिन आपसे करेंगे उपाध्याय जी। आशमा जी कहते हैं कूडोज टू ऑल द इंडियन वीमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन कम्युनिटी। उपाध्याय जी रैपिड फायर राउंड में शैलजा जी को 10 में से 10 नंबर दे
1: रहे। क्या बात है,
2: क्या पास कर दिया आपने।
0: कहीं नीट पर पेपर आउट तो नहीं?
1: पेपर आउट हो गया।
0: और सुनिए शैलजा जी और संजय जी की लेखनी में जादू है। ऋचा जी बोलती हैं संजय जी क्या बात कही, शैलजा जी को समर्पित शेर अति सुंदर।
2: वो तो और भी ज्यादा सुंदर था
1: शेर। जी बहुत शुक्रिया।
0: तो शैलजा जी ऐसा है कि आपने कुछ डिसाइड किया है किसे प्राइज दिया जाएगा?
2: डिसाइड किया है,
0: आपने डिसाइड किया है ना कि आप दो टिकट जो गाता रहे मेरा दिल
2: जी,
0: दो टिकट आप किसे देने जा रहे हैं?
2: यस, हम देखिए हम सोचते हैं कि राजीव जी को टिकट क्यों ना दिया जाए।
0: राजीव जी और मृणाल जी दो हैं।
2: मृणाल जी या राजीव जी? राजीव जी को तो मिल चुके हैं टिकट कि नहीं?
0: मृणाल जी को नहीं मिला है मेरे।
2: मृणाल जी ये
1: कम से कम पकड़ में तो आए हमारे। हाँ
2: बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है उनको।
2: हमारे
1: अच्छा, जिस दिन मृणाल जी को बुलाइएगा हमें बुला लीजिए।
0: अच्छा ठीक,
1: साथ ही साथ आएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: हमारे यहाँ हमारे देश में घूस चलती है खूब की, तो ये प्रदीप जी आप घूस दे रहे हैं
1: सरेआम रेडियो पर।
2: सरेआम रेडियो पे आपके आपके अगेंस्ट तो पूरा एक्शन लिया जाएगा मृणाल जी।
0: बिल्कुल, अब देखिए हमारा समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछेंगे कि आपका अंतिम शब्द हमारे लिए कुछ बोल दीजिए।
1: मैं दो गीत की लाइनें पढ़ दूं वो ज्यादा सही?
0: बिल्कुल जल्दी, हाँ, जल्दी से जल्दी से।
1: ये एक तरह से ये है कि आपका जो मतलब जो हम लोग जिस तरफ दुनिया जा रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा कि उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। सोशल मीडिया में जो कमियां हैं या जहां कहीं भी हैं, जो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं उसके से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि यूं सांसों ने घोटा है दम ये मेरा, भरोसा हवाओं पे कम है जरा, मुझे ख्वाहिशों से न बहलाइए, अंधेरों से गहरा है सपना तेरा, यूं अपना गुलिस्तां तू रुसवा करे, भरोसा तेरा यार कैसे करूं, जो अपने चमन से ही नाराज हो, बता दे उसे यार कैसे कहूं, कैसे कहूं।
0: बहुत सुंदर संजय जी, बहुत बढ़िया, आप यहाँ आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए। और शैलजा जी, तो हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और हम लोगों की ओर से हमारे श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार
2: और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतना समय दिया हम लोगों को। इस हमारी सफलता इसी में है कि हमारे श्रोतागण इससे कुछ पाए।
1: बहुत सक्रिय योगदान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
2: यस,
0: और ये है कि मैं अपने श्रोताओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम चल रहा हो तो कमेंट जरूर करें, कुछ वीडियो वगैरह अगर आपको डालने हैं तो उसके बाद डाला करिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आप अपना कमेंट लिखिए, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और सिर्फ ये नहीं कि आप हमारी तारीफ करिए, आप हमारी कमियों में भी बताइए या किस तरह से हम इसे और अच्छा कर सकते हैं ये
2: बताइए। वही तो असली चीज़ है। हाँ, कि क्या हम नहीं कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के साथ हम एक गीत छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये भी फिल्म कट्टी पतंग से ही है और किशोर कुमार की आवाज़ में है, तो आशा है आपको पसंद आएगा।
2: अब एक बार हमें किशोर कुमार का प्रोग्राम पूरी पूरे उत्साह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर
0: बिल्कुल
2: कलाकार थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।